0: triple R RLF in ka iswai da dan an siam subject proportion at nuwai tar lan mang hian le khabu than ani ang
1: tidam thelo shikpai turin manhelsu wandoi wang a in du khan swal wanga HIV AIDS kai antamzok ruilola film khurla HIV chu ama in omtiro singnun zinkonga positive la HIV AIDS laka low negative ang cheti hi sinot social front so mitse ani e
2: मार्केट के बारे में क्या
3: परफॉर्मेंस का बोलो
2: बी द फ्यूचर
3: मार्केट ट्रेंड टेक
2: सुनने में आएगी
4: आज की खबर देख पहले ही बोला था ब्रो
3: माय प्रेडिक्शन इज
5: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
3: मेरे दोस्त ने बोला
6: देवी जी की सुनो
7: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
8: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
9: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
8: हा?
9: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
8: सॉरी
9: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
8: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
9: मतलब
8: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है
10: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
11: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program chazo kan sop chu azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che
0: hey hi akashwani aizol ani zingdar sari le achan le ania tuna chuan chanchin thar mizo tonga chiar ilangwai thangung

हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी प्यारे दोस्तों को। और आप सभी मेरे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल FM Zoy 100.7। और दोस्तों, आपके साथ हिंदी के खंड पे जुड़ी है फिर एक बार आप सभी की दोस्त RJ वीरी। और आप सभी कैसे हैं दोस्तों? और कल रात की नींद भी आप सभी की कैसी गई? मुझे जानना है कि आप सभी कैसे हैं और कल रात की नींद आप सभी ने मतलब आप सभी की कैसी गई, और आप सभी ठीक हैं या ठीक नहीं है अपने अपने काम में जाने के लिए, आपका सेहत अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये सब मुझे जानना है आपके भेजे के संदेशों में। ठीक है दोस्तों, और मैं आप सभी के प्यार भरे संदेशों का फिर दोबारा इंतज़ार करूंगी। और यस, अगर आप ठीक हैं तो सुबह के 9:30 बजने वाले हैं और आप सभी निकल चुके होंगे अपने काम से, काम के लिए। और तो हम भी अपने इस खंड की शुरुआत करते हैं बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ। और आज का ये जो खंड है ना हमारा हिंदी का ये जो सबसे पहला खंड है ना दोस्तों, ये खंड में इस बहुत ही खूबसूरत गीत जो है प्यार कोई खेल नहीं के साथ में मैं इस खंड की शुरुआत करना चाहूंगी। यस, प्यार कोई खेल नहीं है दोस्तों, इसलिए किसी के साथ भी मत खेलिए, प्यार के साथ मत खेलिए दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, और आपके प्यार भरे संदेश का इंतजार रहेगा। और ये गीत कुमार सानू के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत है, और चलिए सुनते हैं इस खंड का सबसे पहला गीत आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे आज के हिंदी के सबसे पहले खंड का सबसे पहला गीत प्यार कोई खेल नहीं दोस्तों, कुमार सानू के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि आप किसी से मत खेलिए, उनके प्यार के साथ मत खेलिए। यस, और मंगाई नहीं इनफियाम ना मई मैं नीलो नी मो अच्छा है मई तिर चुवांग चुन मंगाई कन मंगाई तो ते चु कन मंगाई बोर तुर नि आ कन दम छोंग इन तिरो दम छोंग कन मंगाई लो तुर अंग छी का चु मंगाई लो मई तुर। तो यहां पर मैं चलना चाहूंगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ, और यहां पर सबसे पहला संदेश आया है गुड बॉय की तरफ से, और गुड बॉय ह्यान आरजे वानलाल तुक तुक थर्ड से बेर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इला ड्यूटी किम ती ना एम नी थे तो पिन कन लो लो मचे हनुई ले फोट हनुई ले चन फोट ला निले इन मूड अफो मई अंग अवा इन पु जाउते आते नोपा जौ नुआम बेराम पु बेराम पु मुआल तेतान ओ अरोन तियानी ओ ले फन फेल छिन तक एम ngak te pa hian rjvl jing lam chi bai le vo in duty nuam om

Pole nang pole o chuan ilapele tur kha good boy nguri sai lo chila zama omega sang tia par pari pu mingmoi tia itan kala ne aron ti bok ani ngakte pa fel thin le mai chuan mingmoi tia hian banal namaste ole aapko bhi namaste duty nuam le bhal bhal shukriya agla git itan le nui pachwa utan aron ti bok ani mingmoi tia hian ole and next time tur hin nui pachaw tan kan hlan hal var varang chuan jilza ma hian yes khovela ka an kam khovela an kamoi ber ka rjvl suprabhat aapko bhi suprabhat zam aap kaise hain zam main ummeed karti hu ki aap theek honge aur apne kaam karne ki jagah pahunch chuke honge hai na yes aur win hi eternal pamal somdon nani loni mul ro se playlist me zong zong kha I duty puinen intan le control room duty zong zong tele duty officer tan po o din pusang ma mate no permission ben khangami tan le par pari pu ngakte pa bil ko thia ramatui real sai lo nguri sol eng pa eng a uchi pe ang ur dwa pa uma dwa nga mission wing tan po o vi kung ler ko a vi kung ler ko a tan ero no te wo induti no am ole ron te ani za ma hian ole sa bahut bahut shukriya aapke pyar bhare sandesh ke liye aur jab bhi mujhe mauka milta hai na za main fm se oi ko sunti hu aur jab bhi main sunti hu na jab aapka sandesh hamare dost rj padhte hain to aap hamesha mera naam matlab mere naam ka zikr karte hain iske liye main aapse bahut मैं आपको बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी यस अजाम का स्वेखा इशियाम कमन सांग यान एफ एम जो ओही कलोंगाई थल वे छीने नी चुमो मसे कंगाई थल रेगुलर थे चालवा गान में थाक चांग यान आरजे ते ना इस मैसेज अनहन चार यान कमिंग ही इलोलम रिटेल वे जिया ही ओ अनुआम कती आ कलोम ए मे मनी ती हा कसोई दू अनी ओजाम और आपका दिन आपका समय यू ही अच्छे से बीता रहे मैं ही चाहती हूँ दोस्तों आप सभी के लिए यस और विकुंगतिया का संदेश आया है लेकिन जाम विकुंगतिया मैसेज है चुद के खल दयांग ओ ने कन चार कान में दोन चार कान ए मैं चुका गम लो नी मेरन स्वा छान ले न सदोन में स्यामो चुआन ओ सिलाई मुते लो खान मिन काप ले वक वक दोन ती पक स्यामो तो चलिए सुनते हैं अगला गीत मेरी तरफ से कुछ हमारे हैं कुछ तुम्हारे हैं बहुत ही खूबसूरत गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में गाए गीत आप सभी के लिए मेरी तरफ से यस दोस्तों कहते हैं ना कि जब हम एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को प्यार करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उनका जो चीज है ना वो आप सब मतलब आपका है वो और आपका जो चीज है ना उनका है ठीक है यस तो चलिए सुनते हैं मेरी तरफ से कुछ हमारे हैं कुछ तुम्हारे हैं आप सभी के नाम

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ आज के यस वेनसडे के हिंदी के सबसे पहले खंड का सब गीत यस आरजे वेले के साथ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, आप सभी पसंद कर रहे होंगे यस, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ दोस्तों कि आपको आपके मतलब आपको जो मतलब मैं वो जो गीत पेश कर रही हूँ वो आपको ज़रूर पसंद आए। और सुबह के 9:30 बज चुके हैं यस, और आप सभी अपने अपने कामों में जाने के लिए निकल चुके होंगे। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप अच्छे से चलाइएगा, ठीक है यस। सिग्नल लाइट दिखा थेंग इन ला ओला कोंग इन क्रॉस दोना कोंग ये लेफ्ट राइट मो कहीं भी जाएंगे तो आप सिग्नल लाइट का ध्यान जरूर देना और अच्छे से चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए आपको। और मैं नहीं चाहती कि आपको मतलब कुछ कठिनाई आए, तो चलिए आप अच्छे से जाइएगा अपने काम करने के जगह पर। और यहाँ पर कुंते अहियान अर्जुम वी एल का ओ जिल जाम पोहियान गाया अने तो चे अन्यांग अंगई एम एम से पो करिंग तो लाओ ती तो संचिन ला अज्ञान दे वांग अदु हुन हुना अज्वार चे आ सुम स्याम नान बा कमंग लाओ चे नॉन ते दाई पै नी इंदिके चिंगिन गे जाम सुम स्याम ना निल लाओ मन रेंग रेंगा पार पारी पुहियान RJVL ka law ngay tarenge izay tiw liya tur ka ming moy te a ngak te pa bil ko tir matwa nga mission ving jila zama vikung te te law ngay tang kata narun tiyani in law siya mo tsu parpari po kan law tansak tur tur tiyo niya o law tansak ve tur tur ru o at lansak te haw kan tsuan zama hiyan RJVL po yi miya law vikung ler ko a message tsu tiyar kan makro ha ha ha lao su ka om alom mai mai ya bu en su i te po chuan vi kung ler ko vi kung ler ko hi kan ti re thei he do nem niang ani ti re thei so i sak tur hian ka in pe ke in pe up to e ro zam so i lo mai yang पल्लो कुंते चु कदवात लाई निलत तो चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों आप सभी को हमारा साथ देने के लिए। और आज सुबह आप सभी ने अच्छे से पाया होगा, आज की सुबह आप सभी ने अच्छे से देखा होगा, और आज के हमारे इस बहुत ही खूबसूरत दिन को चलिए हम खूबसूरत गीतों के साथ भर देते हैं। आप भी आइए हमारे साथ शामिल हो जाइए FM से 100.7 पर संगीत की दुनिया में दोस्तों। और यस अभी जो ये खंड है हिंदी का खंड है, और इसके बाद वेस्टर्न म्यूजिक मिजो सॉन्ग मतलब सभी आते जाएंगे दोस्तों एक एक करके बारी बारी।

से यस। तो चलिए आप सभी का मैं फिर से स्वागत करती हूँ हिंदी के खंड पर। और ये जो खंड है हम सब के लिए 10 बजे तक का खंड है दोस्तों। यस 10 बजे तक अर्जय वियली हिंदी के गीत आप सभी को सुनाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी का दिन यूं ही अच्छे से बीता रहे और अर्जय वियली के साथ प्यार भरे बातों बातें करने के लिए हाजिर हो जाइए। आप सभी का हमेशा इंतजार रहता है दोस्तों। तो चलिए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत मेरा दिल भी कितना पागल है। बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को बहुत ही खूबसूरत गीत, यस मेरा दिल भी कितना पागल है, कुमार सानू और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में गाया गीत आप सभी को ज़रूर पसंद आए होंगे। अब मैं चलना चाहूँगी आपके भेजे गए संदेश की तरफ, क्योंकि मैं आपके संदेशों को पूरा पढ़ना चाहती हूँ। गीत थोड़ा लंबा है और यहाँ पर पार पारी पू ह्यान यस हमें संदेश भेजा है और पार पारी पू ह्यान आज भी अलग अलग लूट ले लोग जिला जा मही इरिंग इरिंग व्या वा रिंग लू तुकते सु इ ओम लो आ ड्यूटी पखत हिचु पुआन पो अच्छी

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सभी मतलब इस खंड के पूरे गीत आप सभी को पसंद आए होंगे और इस खंड के लिए आखिरी गीत सुनाने का समय आ चुका है दोबारा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरे साथ हिंदी के गीतों को आप सभी ने पसंद किया होगा और आप सभी को अच्छा लगा होगा। सुबह के 10 बज चुके हैं, आप सभी अपने अपने काम के लिए निकल चुके होंगे, पहुंच चुके होंगे और आप सभी ने स्टार्ट भी कर लिया होगा। और घर पर बैठे बैठे आप कुछ ना कुछ करने वाले भी होंगे। और मैं चाहती हूँ कि दोस्तों कि आप सभी का दिन हमेशा यूं ही अच्छे से बीतता रहे और FM Zoy 100.7 पूरी कोशिश करेगी कि आपका साथ दे, आपके दिन को खुशी और आनंद से भर दे दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको हमें सुनना है, हमें संदेश भेजना है, हमसे बातें करनी है दोस्तों, ठीक है। आरजे वियली आखिरी गीत के साथ आप सभी से विदा लेना चाहेगी और वापस आएगी 11:20 पर, ठीक है। और मैं आपको सुनाने वाली हूँ इस खंड का आखिरी गीत तू जो मिला। के आवाज में गाया गीत तू जो मिला मैं आप सभी को सुनाना चाहूंगी। और दोस्तों कहते हैं कि जब हम किसी स्पेशल इंसान से मिलते हैं तो बार बार उसी के बारे में सोचते हैं उससे बात करने का मतलब उनसे बातें करने का मन करता है, उसे मतलब उनसे मतलब उन्हें देखकर खुशी और नर्वसनेस भी होता है ना दोस्तों। और छोटी छोटी बातें भी याद आते हैं हमें मुझे भी याद आती है छोटी छोटी बातें और उसके सामने मतलब उनके सामने अपने आप में मतलब कुछ अलग सा फीलिंग होता है तो चलिए ये गीत मैं पेश करना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को तू जो मिला। बहुत ही स्पेशल गीत मेरी तरफ से आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, के आवाज में गाया गीत इस खंड का आखिरी गीत और आरजे वियली की तरफ से जिन्होंने भी सुबह का नाश्ता नहीं किया है उन सभी के लिए इन सबाइन निमन नुआम ओ स्वान चोलाई वेलौतान जिंग चोलाई वेलौतान चुए तुपे ओ

नमस्ते श्रोताओ, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अब आपको बेहतर सेवा प्रदान करने के हमारे प्रयास में हमारे साथ जुड़े रेज रेडियो ऑडियंस इंटरैक्टिव सर्वेक्षण और मूल्यांकन हमारे विशिष्ट मोबाइल ऐप के साथ मानद संरक्षक बने, जहां आप उद्घोषकों को रेटिंग दे सकते हैं, कार्यक्रमों की समीक्षा कर सकते हैं और अपनी प्रतिक्रिया साझा कर सकते हैं। बस हमारे आधिकारिक फेसबुक पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पंजीकरण करें। आपकी सक्रिय प्रतिक्रिया हमें आकाशवाणी की विरासत को बेहतर बनाने और बनाए रखने में मदद करेगी। तो सिर्फ सुने नहीं, रेज मोबाइल ऐप के साथ बदलाव का नेतृत्व करें।

हेलो नमस्ते, आप सभी का हम स्वागत करते हैं दोबारा हिंदी के खंड पर। और आप सभी हमारे साथ सुन रहे हैं आकाशवाणी आइजोल एफएम 100.7। दोस्तों, और आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आप सभी ने हमारे दोस्त यस आरजे यस सांगते के साथ उनके साथ आप सभी ने उनके खंड पे भरपूर एंजॉय किया होगा गीत को सुनकर, और आप सभी ने संदेश भी भेजा होगा उन्हें। यस, तो चलिए हम भी शुरुआत करते हैं अपने इस खंड को, और मैं सुनाना चाहूंगी बहुत ही खूबसूरत गीत दिल क्या करे। यस, और इस गीत के साथ मैं आप सभी के पल को, इस समय को बहुत ही हसीन बनाना चाहूंगी दोस्तों। और चलिए, आप सभी की दोस्त आरजे वियली आप सभी का इंतजार करेगी आप सभी के प्यार भरे संदेशों का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला इस खंड का गीत मेरी तरफ से

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे इस खंड का सबसे पहला गीत दिल क्या करे आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। दोस्तों, जब किसी इंसान स्पेशल इंसान हमारे दिल में बस जाते हैं तो हमारा दिल मतलब उनके बारे में ही सोचता है और पता नहीं हम क्या करेंगे क्या ना करेंगे। ये सोच सोच करना हम अपने वक्त को गुजार देते हैं और समय इतना जल्दी चला जाता है वो भी नहीं पता चलता है हमें, है ना दोस्तों। तो चलिए हम प्यार की तरफ आगे बढ़ेंगे और चलिए सुनते हैं क्या हुआ तुझे। चलिए फिलहाल अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज में गाया गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को क्या हुआ तुझे सोनू निगम और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत आप सभी को जरूर पसंद आया होगा दोस्तों। और हमारे पास वैसे भी आधे घंटे का समय है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं आपका समय उतना ज्यादा नहीं लूंगी पक पक करके मेरी बक बक को ही अगर सुनेंगे तो मतलब शायद वो बोर ना हो जाए इसलिए मैं जल्दी से आप गीत की तरफ बढ़ना चाहूंगी। और लेकिन यहाँ पे गीत की तरफ बढ़ने से पहले यहाँ पे मेरे दोस्त अजामा की तरफ से संदेश आया है। उन्होंने लिखा है आज भी सगमेंट आकल उलोमत से बेलिस ले तुर जोंग जोंग का एफएम सो और मोरून बेल तू तितान ले इतान सियाल बेग्रिया विन कन लान कन थन सकनाप नाप अंगे रन त्यानी और ले जाम chuan nuam deuhin hun lawmang se raw chuan meng mawi te hian ban la ngai thla tu zong zong tan a rawn te bawk ani ole meng mawi te kalhla plei te ngai thlak tir te aw mawi i lo ti em aw yes or not in min lo chhang lei la to chali e elza sai la hian lo ta

वेल दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को अभिजीत और अलका याग्निक के बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत हंसाते हो रुलाते हो आप सभी को पसंद आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा और हमें भी सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। यस, हमेशा तुम सताते हो। यस, आप किसको सताते हैं? मैं तो आपको नहीं सताती, आप ही मुझे नहीं सताते होंगे। लेकिन कुंगते तो मुझे बहुत सताते हैं। तो लेकिन हम इस तरह एक दूसरे को हम सताते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्यार प्यार प्यार के कारण दोस्तों, यस, हम एक दूसरे को सताते हैं, छेड़ते हैं, है ना दोस्तों? यस। और तो यहाँ पर van lali o ka she thei lo a remove a remove mum ringot radio signal ka nei cha lo lut tuk leng pui a ka om na ron ti ni el jet sai lo hian van sia lo ve o ngating ele ole van poi na kina lo chale me to ra nga yang o chuan ming moi te hian van lal amoi nga la tu na mi po amoi nang chuan la lan nal ka ti इप्लेट लांग पुई छिन रन तानी मेंग मोयते ह्यान कवन लोम। ओले तो चलिए अगले गीत के तरफ बढ़ते हैं। अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप सभी प्यारे दोस्तों को। यस, आप सभी एफएम सो 100.7 को जो भी सुन रहे हैं हमारे साथ, यस, आप सभी को भी अगर हमसे यस आपको मतलब बातें करने का अगर मन करेगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है? यस, हम आपका इंतजार हमेशा एफएम 100.7 पर करते हैं। और यस, इस तरह हम एक दूसरे के साथ हम इतना बातें करते हैं कि समय इतना जल्दी बीत जाता है ना, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है दोस्तों? यस, तो यहाँ पर अगले गीत की तरफ मैं चलना चाहूंगी और अगला गीत मैं सुनाना चाहूंगी आप मुझे अच्छे लगने लगे। यस, अभिजीत और अभिजीत चक्रवर्ती और अलका याग्निक के ही बहुत ही खूबसूरत आवाज में गाया गीत है।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पूछना चाहती हूँ आप सभी से कि आप हमें मतलब कि मैं आपको अच्छी लगती हूँ या नहीं। मुझे तो आप बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों, आपके बिना तो हम अधूरे ही हैं। FM Zone 100.7 आपके संदेश के बिना अधूरे हैं दोस्तों। यस, तो यहाँ पर एल बी रेंथियान आरजे वी एल गुड मॉर्निंग अरोन्तिया। यस ओ इलत लाए लवे कथेन वेले FM ही कखोई मसाजिया छुन इ प्ले लिस्ट अनल ले मई अथे चुआन मौसम प्यार का रंग बदलता है। यस ती सीतमगढ़ फिल्म अमी खा इतान ले FM गाय लतू जों जों तानो रोंतिया। ऑल राइट एल बी रेन थे ख्यान। यस बहुत मतलब समय के बाद एल बी रेंथई ने हमें हमसे फरमाइश गीत मांगी है दोस्तों। यस मौसम प्यार का रंग बदलता है, तो चलिए सुनते हैं एल बी रेंथई का फरमाइश गीत मेरी तरफ से आप सभी के लिए। यस और इस गीत ने सही कहा है ना, मौसम प्यार का रंग बदलता है कभी। यस जैसे कि वेदर बदलता है ना, कभी विंटर, विंटर के बाद समर, फिर समर के बाद रेनी सीजन, ऐसा मतलब उसी तरह प्यार का रंग भी बदलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और हमारा ये जो संबंध है ना कभी नहीं बदलेगा। अगर जितना चाहे मौसम बदल भी जाए ना दोस्तों हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। यस तो चलिए ये गीत मेरी तरफ से एल बी रेंथई का फरमाइश गीत आप सभी के नाम।

वाओ, इतना खूबसूरत गीत एल्बी की तरफ से फरमाइश गीत हमारे लिए, आप सभी को भी जरूर पसंद आया होगा दोस्तों, हमें भी बहुत पसंद आया है। यस, इस तरह एल्बी रेंटले से हम कहना चाहते हैं कि हमेशा वो गीत फरमाइश करते रहें दोस्तों। यस, और Else sai lo hian she be le thei ta e haron dia ban lom om ve o chuan twang ta win i lo le le don nia o और हमारा समय भी खत्म होने वाला है, तो इसलिए एक गीत से, यस, इस खंड का आखिरी गीत के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी दोस्तों। जी तो करता है, मन तो करता है कि आपसे यूं ही बातें करते रहे और आपको गीत सुनाते रहे, लेकिन क्या करें दोस्तों, हमारे पास समय नहीं है, समय की पाबंदी के कारण हम ऐसा नहीं कर सकते। यस, चाहते तो हैं लेकिन अगले खंड पर आपके साथ यस वेस्टर्न म्यूजिक सुनाने के लिए आपकी आरजे नुंगनुंगी हाजिर होगी। यस, और मैं वापस आऊंगी दोबारा अपने खंड को लेकर 2:35 पर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये आखिरी गीत दो दिलों की कहानी से मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगी, और ढेर सारा प्यार मुझे देने के लिए और हमें सुनने के लिए, हमें अपने वक्त देने के लिए दोस्तों दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आप सभी का दिन अच्छे से बीता रहे और खुशियाँ और आनंद से। यस, और कभी कभी आपको मौका मिलेगा तो हमें मौका मिलेगा तो हमसे बातें करने के लिए ज़रूर आइएगा, ठीक है, एफ एम 100.7 पर, और हम आपका इंतज़ार करते हैं और आपके संदेश को हम पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, ठीक है। यस, तो चलिए ये गीत मेरी तरफ से, इस खंड का आखिरी गीत आप सभी के नाम।

हेलो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं हिंदी के खंड पे। और आप सभी के साथ जुड़ी है आप सभी की दोस्त आरजे वीएली। और दोस्तों, आप सभी का दिन कैसे बीता? यस, हमें जानना है कि आपका दिन कैसे बीता। और

सुनाया होगा। और तो चलिए हम अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। और अगला गीत सुनाने से पहले मैं आपके प्यारे प्यारे भेजे गए संदेश की तरफ चलना चाहूंगी। और यहाँ पर संदेश आया है अमोस की तरफ से। अमोस ह्यान, गुड आफ्टरनून, खूबसूरत आवाज वाली आरजे वीएल, आपको भी गुड आफ्टरनून अमोस। आज क्या हो गया आपको, आपने मुझे संदेश भी नहीं भेजा? मुझसे नाराज हो क्या? पर मुझे तो नहीं लगता कि आप मुझसे नाराज हैं। मेरे लास्ट आखिरी खंड में मुझे संदेश भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अमोस लिखते हैं कि इनी मन अनुआम मो अरंदी अनुआम खो मई इंजारा। और मेरे दोस्त जामा अन टाइप में कालोला ठेंग लवा। तो यस, फिलहाल चलिए और अमो सीखते हैं कि इप्लेन लोम खोप मई गो गो हे ने लो गई थाक ही अनोम दा नंग दाई नि। यस, और मेरे दोस्त जामा की तरफ से संदेश आया है। जामा ही अना जवील पथियान जारा दम सुन हुन इवा इवन हुन ही अवन दियाम चक तक नि एत्रो जाम अलियाम चक खोप मई कम ओम लव्याव ना इन वो इन अतान सेगमेंट तो पेर ना गन लव थेंग ले तदेर मई ल्वांग तकिन हो अंग से ओ मानी लम फीम खुर व्याव छिन मा से मितम तक फीम खुर लव जार गन तोर फा चांग ही ओम चो कनी आ ओम चो कनिया इबाई थे सी आ इहो कुंगा फिम खुर ले अंसे ओ नेक्स्ट सॉन्ग इतान सो। यस, जाम बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न के लिए, आपके खेयर के लिए, आपके प्यार के लिए। यस, तो चलिए मैं चलना चाहूँगी अगले गीत की तरफ। और अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी जाने दिल में कब से है तू, मेरी तरफ से लता मंगेशकर। और सोनू निगम की आवाज़ में गाएगी मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

Well, दोस्तों उम्मीद है आप सभी को इस खंड का सबसे पहला गीत यस मेरी तरफ से शाम भी खूब है आप सभी को जरूर

तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को मेरे साथ यस हिंदी के गीत आप सभी को सुनकर अच्छा लग रहा होगा। और थोड़ा ज्यादा मतलब ये गीत लंबा है इसलिए हम रोक देते हैं। और यहाँ पर गुड बॉय की तरफ से संदेश है, गुड बॉय यान आज वन लल ये चांदी नंद होसन तो से एम ए इलाउ देव एम ए इलाउ देव एम और रोन श्वाई इंगाई लाउमो मिलो श्वाई रो तिमा इला मिरोन श्वाई थे दोन सांग लावा मिलो श्वाई अंगा का इंगाई में यंग तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी की बहुत याद आएगी क्या, क्योंकि ये खंड इस खंड के लिए आखिरी खंड है। और मैं दुआ करती हूँ यस मतलब मैं दुआ करती हूँ हमेशा कि आपकी आपकी ज़िंदगी हमेशा खुशियाँ से भरे। और मैं आशा करती हूँ और यस मैं उम्मीद रखती हूँ कि आज का दिन आप सभी के लिए अच्छे से गुजरा होगा और आज के शाम भी रात भी अच्छे से बीते। यस जब तक हम नहीं मिलेंगे आप सभी अपना ख्याल रखेंगे फिर, है ना दोस्तों। यस तो अगले गीत की तरफ बढ़ना चाहूँगी। अगला गीत मैं सुनाना चाहूँगी आप सभी प्यारे दोस्तों को, प्यार तो होना ही था। चलिए सुनते हैं तो प्यार तो होना ही था मेरी तरफ से आप सभी के नाम।

तो दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को हमारे साथ आज के FM Zone 100.7 के हमारे सभी खंडों के गीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। और हम दिल से आप सभी को शुक्रिया अदा कहना चाहेंगे कि आपने हमारा साथ दिया और

अपने कीमती वक्त निकाल के अपने मतलब काम करने के साथ साथ आप सभी ने हमें संदेश भेजे, हमारा साथ दिया दोस्तों। इसी के कारण दोस्तों हम आपसे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे दोस्तों। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह हमारा ये जो प्यार का संबंध है, दोस्ती का संबंध है, जो भी संबंध है दोस्तों, यूं ही हमेशा जिंदगी भर दोस्तों जब तक FM ओए रहेगी ना दोस्तों बरकरार रहे, हम चाहते हैं। यस, मैं तो चाहती हूँ, आज वी ली चाहती है कि इस तरह FM ओए 100.7 पर प्यार भरे बातें ही करते रहे हम, और आपका समय यूं ही बीतता चला जाए दोस्तों खुशी खुशी। यस, जिंदगी बहुत छोटी है दोस्तों। यस, मतलब कुछ किसी के बारे में बुरा भला सोचने के लिए, और किसी के बारे में मतलब जो हमें पसंद नहीं करते, जो हमें जो हमसे बातें नहीं करना चाहते, उनके लिए सोच सोच के अपना दिन गुजारने का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको चाहते हैं, उनसे बस बातें करिए, उनके साथ वक्त बिताइए, जैसे कि हमारे साथ FM 100.7 के साथ दोस्तों, स्पेशली RJ वेली के साथ। तो चलिए फिलहाल क्या पता हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमारी मुलाकात हो, इसी की मतलब इसी आशा के साथ मैं इस गीत के साथ आप सभी से अलविदा कहना चाहूंगी। और जब तक हम नहीं मिलेंगे, आप सभी अपना ख्याल रखना, ठीक है? यस, और क्या पता जल्द जल्दी मुलाकात हो फिर FM 100.7 पर। तो चलिए जाते जाते यहाँ पर अमोस ने संदेश भेजा है। अमोस लिखते हैं, आज भी अल्तवा तकिन होला नाम तकिन जान हुन मंग अंग से ओ अले नंगनी पॉइंट सवाई खान हुन नाम दे उलो मंग जेल उला हुन खिर दे उते बोलो तोंग बा उला अ सोल्यूशन ही ओम जेल ने ती खा लो थे लो उला ओ लो त्वार चांग चांग उला लो त्वार फन फन उला तेरो इनकिम में ही अच्छा वेक दोनों है ना दोस्तों। ये सब कुछ ठीक होगा दोस्तों, आप सब्र करिए, इंतजार करिए, ठीक है? जिंदगी में आपके आने वाले जिंदगी में बहुत ऐसे इंसान मिलेंगे आपको जो आपको हमेशा खुश कर दे, ठीक है? तो चलिए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ मैं अलविदा कहना चाहूंगी। यस, जो ऑलवेज माई मतलब मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत। यस, तुमसे मिलने को दिल करता है से मैं आप सभी से विदा लूंगी। तो आज वेली की तरफ से बाय बाय, टेक केयर, बेकू।

हैं लवलीन निगम। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवगठित सरकार ने 144 विधायकों का बहुमत हासिल कर विश्वास मत जीत लिया है। एडापड़ी पलानीसामी के नेतृत्व में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 22 विधायकों ने विश्वास प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। भाजपा विधायक और पीएमके समेत 5 विधायक तटस्थ रहे। डीएमके और अन्य गठबंधन सहयोगी दलों ने प्रस्ताव में भाग नहीं लिया और विधानसभा से वॉकआउट किया। एसपी वेलुमणि के नेतृत्व वाली एआईएडीएमके ने सरकार का समर्थन किया। मुख्यमंत्री ने बहुमत साबित करने का प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया था। ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस नेता एन रंगासामी ने आज रिकॉर्ड 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। लोक निवास में आयोजित समारोह में पुदुचेरी के राज्यपाल के कैलाश नाथन ने टी श्रीरंगासामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखिल भारतीय एनआर कांग्रेस के मल्लाडी कृष्ण राव और भाजपा के ए नमस्सीवीएम ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम, अधिकारी और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता में 18वीं विधानसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट से विधायक के रूप में शपथ ली, जबकि नंदीग्राम सीट रिक्त रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में घरेलू दौरों के लिए अपने काफिले का आकार काफी कम कर दिया है। विशेष सुरक्षा समूह एसपीजी प्रोटोकॉल के अंतर्गत अनिवार्य सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाएं बरकरार रखी गई हैं। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या में कमी गुजरात और असम की उनकी हालिया यात्राओं के दौरान लागू की गई थी। ये कदम पश्चिम एशिया संकट के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाकर आर्थिक मजबूती में योगदान के लिए प्रधानमंत्री के 7 अपीलों के अनुरूप है। प्रधानमंत्री मोदी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जहां भी संभव हो बिना कोई नई खरीद के उनके काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन शामिल किए जाएं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र रोल नंबर डालकर आधिकारिक वेबसाइट डिजी लॉकर और उमंग ऐप पर अपना परिणाम देख सकते हैं। इस वर्ष कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल तक आयोजित की गई थीं। सीबीएसई के अनुसार 17,68,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। इनमें से 15,07,000 से अधिक विद्यार्थी

0: उत्तीर्ण हुए। इस वर्ष का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 85.20% है। छात्राओं का उत्तीर्ण प्रतिशत 88.86% और छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत 82.13% है। नीट यूजी परीक्षा के कथित रूप से प्रश्न पत्र लीक होने की जांच के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई का दल जयपुर पहुंचा। दल ने राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी द्वारा हिरासत में लिए गए लगभग कई लोगों से पूछताछ की। जांच के अंतर्गत एसओजी ने सीकर और आसपास के इलाकों में लोगों से पूछताछ की। पंजाब सरकार ने रक्षा बलों में कार्यकाल पूरा करने के बाद अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण नीति बनाने का निर्णय लिया है। प्रक्रिया रूपरेखा को अंतिम रूप देने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सोने या चांदी की कीमतों में आज 6% तक का भारी उछाल देखा गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के वायदा बाजार में जून अनुबंध के अंतर्गत सोना लगभग 6% बढ़कर 1,62,597 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि जुलाई अनुबंध के अंतर्गत चांदी लगभग 6.4% बढ़कर 2,96,821 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। सरकार ने सोने और चांदी का आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है। भारत में इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जल्दी हो सकता है। इस सप्ताह के अंत तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में मानसून आ जाएगा। इस बीच विभाग ने देश के पूर्वोत्तर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कल तक मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आज ओलावृष्टि हो सकती है। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में पीवी सिंधु और किदांबी श्रीकांत प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। दो बार की ओलंपिक विजेता पीवी सिंधु ने चीनी ताइपे के तुंग स्यू टोंग को सीधे सेट में हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। The newly sworn-in government led by Chief Minister Joseph Vijaya has proven majority of 144 MLAs and has won the vote of confidence today. 22 AIADMK MLAs led by Edappadi Palaniswamy have opposed it. 5 MLAs including BJP MLA and PMK remain neutral. DMK and other alliance partners did not participate in the motion and walked out of the assembly. The motion to prove majority was brought by Chief Minister in the assembly. The AIADMK, led by SP Velumani, supported the government. Veteran political leader and founder of the All India NR Congress, N. Rangaswamy, today took oath as the Chief Minister of Puducherry for a record 5th term. Along with him, A. Namasivayam of the BJP and Maladi Krishna Rao of All India NR Congress were also sworn in as ministers in the NDA government. The oath-taking ceremony for the newly elected MLAs of the 18th West Bengal Legislative Assembly is underway in Kolkata. Chief Minister Subhendu Adhikari took oath from Bhavanipur seat as MLA and the Nandigram seat has been left vacant. Afterwards, 5 other cabinet ministers also took the oath. Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced the size of his convoy during recent domestic visits while retaining all essential security arrangements mandated under the Special Protection Group SPG protocols. According to sources, the reduction in the number of vehicles in the Prime Minister's convoy was implemented during his recent visit to Gujarat and Assam. The move comes in line with the Prime Minister's 7 appeals to citizens to contribute towards economic resilience by reducing dependence on imported fuel and adopting environmentally sustainable alternatives amidst West Asia crisis. Following Prime Minister Narendra Modi's appeal, Union Home Minister Amit Shah downsized his convoy, reducing it to less than half. The Chief Ministers of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Delhi have announced measures to reduce the use of official vehicles by ministers, MLAs and public representatives. Gold and silver prices today witnessed a sharp surge of up to 6%. In the futures market at the multi-commodity exchange, gold for the June contract was trading nearly 6% higher at 1,62,597 rupees per 10 grams, while silver for the July contract was trading around 6.4% higher at 2,96,821 rupees per kilogram, according to the latest reports. However, during intraday trade, gold and silver prices touched gains of up to 8%.

ngai thla in hun te kan phang tan don ani chuan hemi do ta kan hun man dan tur zel te kan puang le zelanga chumi ma chuan ngai thla tu zong zong te in zawa in in lo dam tlan kan be se ya chuan win tlaya tanga zan thlenga kan hun phan tur zong zong a hian hun hlimom tak le nom tak mang turin du sakna kan hlan chewa in zawa in chebai vek ule darnga a hian sa phla kan ngai thlanga darnga le chan via zai fakin ti in mizo tonga pathian fakna hlamoi tak tak te kan ngai thla anga daru ka hian sa phla kan ngai thlenga daru le minit som ni panga a commercial break kan neang daru le chan via chan chin thar mizo tonga chiar kan ngai thla anga daru le minit som hli lia khindi thla kan ngai thlak chhun zomanga dar sari a hian artist choice heta hianin mizo hla kan ngai thla donani dar sari le chan via sa phla kan ngai thlenga daria ta chanchin thar lang sar zwal kan ngai thla anga daria tle minit ni atang hianin artist choice heta hianin hindi hla kan ngai thlave thung donani daria tle chan via zai pol hlare moi tak tak te kan ngai thla anga dar kwa a chanchin thar lang sar zwal kan ngai thle ang dar kwa le minit ni atang hianin western music dar kwale chan ve thleng kan ngai thla anga dar kwale chan ve tanga dar soma hian hindi hla kan ngai thak chun zom nga dar soma lunglen tizwal tu ti in mizo lengzem hlamoi tak tak te kan ngai thla don ani dar som le chan ve zan ina kan hun te ti top ani ang hi dosto aap ki arjun 108.7 fm zo mein aap sab ke saath shuruaat karte hain aaj ki sham ka ye second transmission jo hai hindi गीतों से और लाई हूँ आप सबके लिए मज़ेदार मज़ेदार और खूबसूरत गीत दोस्तों आप सबको पसंद आएंगे जितने भी गीत हम प्ले करने जाएंगे और मैं कहना चाहूँगी साथ ही साथ आप सब हमें यहाँ SMS दे करके अपनी बातें भी कह सकते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं चलना चाहूँगी गीत की और हमारा सबसे पहला गीत होगा मिले हो तुम ये नेहा कक्कर की आवाज़ में है बहुत ही सुंदर है आप सबके लिए और नेहा कक्कर के साथ साथ टोनी कक्कर यानी कि दोनों ही भाई बहनों की आवाज़ों में हम सुनेंगे आप सबके लिए तहे दिल से मेरी ओर से जाता है ये रहा गीत लीजिएगा आनंद

दोस्तों नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ की आवाज़ों में था मिले हो तुम, बहुत ही सुंदर वाकई में। और मैं जाना चाहूँगी आपके SMS की ओर। यहाँ SMS आया है दुर्गेश नगनपुर की ओर से, इन्होंने हमें लिखा है गुड इवनिंग आरजे, नमस्कार कहा है आपको, फिर नमस्कार, बहुत अच्छा लगा आपका SMS सबसे पहला यहाँ पे मेरे लिए आया है, वेरी नाइस सॉन्ग, शुक्रिया दिल से कहा है उन्होंने, और हम भी आपको शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने हमें SMS भी दिया और हमें सुन भी रहे हैं। और दुर्गेश नगनपुर और उनकी फैमिली के लिए सारे के सारे गीत जो है मेरी तरफ से जाता है। और अगला SMS यहाँ पे भी कुंगती है राय रातिया की ओर से, इन्होंने कहा हर जो मन पे ट्लाइलम ट्लाइनी नेम चिबई ओर रंतिया नंग पो चिबई मल मल्ले ड्यूटी नाम ले रंती ने, शुभकामना मेरे लिए वी कुंगतिया की तरफ से, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह से मैं इनको कहना चाहूंगी वी कुंगती आई तान कल हंग आई थाक तोड़ते करोंती नी सिला और अतोप मिल लोठन पुले दोन्या। ओ मिंग मोई ते की ओर से इन्होंने कहा है माँ मोन पुई नमस्ते ड्यूटी नाम ले मासे इनकोम जानन्या तीनी निंगो मैं तरो इनकोम जान ही अलो ने ले ठीन बोक्स या एंग पोनी से इनकोम गई पोई मो हे ठाए मैं मा का सपोर्ट लिया लिया तुप मैं ने जुमो चौन इनकोम ते ते ते सु इनकोम इला चौन इन मिंग मोई ते अपो इंगे ने तुंग तक इन खोम तोरिन दु सखना का हान छे आ चानिन इन खोम बान लमा ते हेति लमा इंगे ने लाते कन गाय था होले अंगा तुना हियान इन खोम मा जोंग मिन तेल पुई थै छिना चान कन लंगाई था तोरते इतान करोन हान छे। ओ हां चलना चाहूंगी के वाला यहां पे लिखता है फर नमन पुई कलौलुत वे खाले रोंतिनी नोक नोक मैना ओ रोन पल अरोन पल थुखुत खुत नियांग हे अरोन कल नोक नोक के चोन कलो लुत वे खा ले अरोन ते अरोन लुत रंग त खप मे हे मिंग मोय ते ते वी कुंग ते ते के के वा ल तेन रोन लु थत थि चोन इन ए कन किम खाल थत थि न रिंगोत मे ने दुर्गे से इन उनाव पा तेल बोकमो चोन इन अदंग ले खा इन उनाव पा खा तुंगे दि खा ए खुत मि खा हितेंद्र दास खा ओ रोन लंग तुरंगाई बुकंग

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी अगले गीत की ओर, मगर मैं एक शब्द कहना चाहूंगी। आप सब जो है FM 100.7 की सबसे खूबसूरत मिसाल हैं, और मोहब्बत जो है, जैसे गीत में हम सुना था, वो एहसास है जो शब्दों से पूरे हैं। और आपके बिना 100.7 FM जो है अधूरा है। इन्हीं शब्दों के साथ चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत सनम द्वारा गाया गया,

दोस्तों, सनम की आवाज़ में हमने सुना था अभी अभी बहुत ही सुंदर गीत, मेरे महबूब कयामत हो गई गीत था। और मैं कहना चाहूँगी दोस्तों, मुस्कान चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाती है, ठीक है? इसी कारण से क्या है, हमेशा मुस्कुराना बहुत बहुत अच्छा होता है। और एक बात क्या है ना, सच्चा प्यार वही होता है जो खुद से ज्यादा दूसरी की खुशी चाहता है। इसीलिए अगर प्यार की भावना जो है ना हर जगह अगर पनपने लगे तो जीवन और आसान हो जाएगा। इसी कारण से आइए चलते हैं हम सब भी प्रेम की भावना रख करके

जीना सीखते हैं। यहाँ विकुंति लिखता है इप्लेले तुर्खा जामले अरतिल लविन पर पारी पुंग और साइलो में मोइते अले एलजेट साइलो तितान और तीने विकुंते हैं ओले इतन सकते इतन ते जोंग जोंग हैं लोग आए थे तो रंग आए बुकों ओ विकुंते नंग मातान पोपरों ते लेट वे ए चला चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत ये रहा दोस्तों ओ हमदम सुनियो रे, बहुत ही सुंदर गीत है आप सबके लिए मेरी ओर से।

0: नहीं जा सकते, एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट। यू टर्न करो और वापस जाओ। चलो चलो चलो।
1: ओके सर,
0: एम्बुलेंस निकालो।

दोस्तों यहाँ एलजित लिखता है गाय था ए थैंक यू रंतिया ओ कुंते है लो गाय थे ये नहीं है चौन यहाँ पे अगला एसएमएस जो है मैं मोई थे की ओर से माँ मोन पुई अंसोई वी कुंते ले अमा के वाला तितान रंते ने हाले अमा के वाला ही पुई मोटेल तरह एक माह ही अरुण सोई ले दो तो मिया लोटा शिएना मासे नकेना अरुण चेवक दोन अन्यांग इन कोम लान वेलिन इन पोनी से के वाला दो सकता का मैं मोई थे अन अरुण चंचे उलुक तकिन लोंगाई थादोन ने ओ चोन मेंग मोइते पो गंगे थागले तोरी तां किरोन तिया एलजे तते पो हे या नोम के हावे ओ कन किम चन आ चला चाहूं गे अगले गीत के और अगला गीत मेरे सपनों की रानी सनम की आवाज में आई सुनते हैं।

दोस्तों, मैं कहना चाहूंगी, सच्ची दोस्ती, मजबूत रिश्ते और सच्चे प्यार की पहचान जो है, विपत्ति के समय होती है। विपत्ति के समय ही पता चलता है, ठीक है दोस्तों, कि परिवार में लगाव कितना है, वरना रिश्तों में प्यार नापने का या सच्ची दोस्ती की पहचान नापने का कोई तराजू नहीं होता। विपत्ति के समय में वे आपके साथ किस तरह से सलूक करते हैं, किस तरह से पेश आते हैं, आपकी मदद करते हैं या नहीं, ये सब बातें जो है, इससे पता चलता है कि सच्ची दोस्ती उस व्यक्ति में है या नहीं, ठीक है ना। चलना चाहूंगी, SMS की ओर के वाला लिखता है, फर्नवान पुए उमेंग मोइते अन मिनलो थन सक खान का दंगलम हुई आ लोम ना लोम तुरा गा यंग ओ रंतिया आई फोट मे यंग आ ए इलो ले तो लंगे इन पो नि से ए दंग लोम हुई खा थलम जोंग इन लोनि ते से ओ के वाला तुई तकै गै थाक ता नि तान कन गै थाक तोर हि करंतिया जान मे दंग जोंग जोंग पो अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है। आपकी आरजे 108.7 FM जो में दोस्तों, मेरे बाद आएगी आरजे CV आप सबके लिए, और इनका भी साथ दीजिएगा और हमारा भी। मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा, मैं लौटूंगी आप सबके लिए 6:40 में। चलते हैं गीत की ओर, गीत माही वे, ये रहा आप सबके लिए।

आपकी आरजे वन पी 100.7 एफएम जोए में आप सबके साथ एक बार फिर आए समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों मैं कहना चाहूंगी आज यानी कि 13 मई 2026 है ना दोस्तों, आज का दिन बहुत खास है इसलिए क्योंकि सभी 12th में परीक्षा देने वाले सभी स्टूडेंट्स के रिजल्ट का दिन है और देखने में आया है कि बहुत ही अच्छे परसेंट में सभी पूरे भारत और भारत के बाहर जितने भी सीबीएसई स्कूल्स हैं वहां में से 85.20% स्टूडेंट्स जो है पास कर गए हैं। लड़कों से ज्यादा लड़कियों ने अच्छा किया है, उनका परसेंटेज अच्छा रहा है और इसी तरह से आज का दिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए खुशी का दिन है और सभी उन खुशी प्राप्त करने वाले और परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले स्टूडेंट्स को मैं बधाई देती हूँ और साथ ही साथ जिन्होंने अभी पास नहीं कर पाया है वे भी मनमुटाव ना करके नेगेटिव थिंकिंग ना रख करके पॉजिटिवली आप सोचिए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, कुछ उपाय सोचिए। रिपीट करने में कोई बातें नहीं है, पास करने वाले आगे बढ़ते जाइए, कॉलेज जाएंगे और अच्छी तरह से आगे भी पढ़ाई करें, ये मेरी शुभकामना है सबको। और इसी के साथ साथ चलते हैं गीत की ओर। सबसे पहला गीत इस वक्त रहेगा प्यार के लिए गीत, दिल क्या करे फिल्म का है और अलका याग्निक की आवाज में हम सुनेंगे। ये रहा आप सबके लिए।

दोस्तों गीत बहुत बहुत सुंदर था वाकई में। गुड बॉय द्वारा जो SMS आया है इसकी ओर जाना चाहूँगी। छोन लमा लो एक्टिव दे उमा इला जानिन चो दंग इन निले तो आ लो लंगले सिप मयंग ओ आरजे वन पुई रंते गुड बॉय हियानिन ओ तेरेंग में गुड बॉय इन ओम हियान नवा ममो चो फंग चानिन छोना लो लंग तो मउला जन लमाइन रन लल्ले खानि नोम कन लोते एम एम ने ते खा मिलोर शत सख दोन ने ओ जोन कन गे थाग ले तुर हि इतान करोंती आ गुड बॉय चोन तुई तकिन लोंगाई सदोन ने ओ आते जाते जो मिलता है ये जो है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में हम सुनेंगे। और इसी गीत को मैं आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ। आपकी आरजे मोहनपुरी 100.7 FM जो ओ में आप सबके साथ मैं लौटूंगी आप सबके लिए। तब तक के लिए फिर लौटूंगी, तब तक के लिए मेरे फिर से इंतज़ार कीजिएगा। आपकी आरजे CV आ रही हैं आप सबके लिए और इनका लाइव शो होगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं गीत की और। आप सबके लिए ये रहा।

आपके आरजू मानपुरी 100.7 FM जवाई में आप सबके साथ ही एक बार फिर आए समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों, मेरे मनपसंद गीत प्ले करने का समय आया है। आप सब साथ देते रहिएगा। और ये रहा सबसे पहला मेरा मनपसंद गीत आप सबके लिए, तुम मेरे। गीत नया है और मृणाल ठाकुर, वरुण धवन, इनकी आवाज़ों में हम सुनेंगे।

दोस्तों, मैं एसएमएस की ओर जाना चाहूंगी। नया गीत था फिर कभी। इल्जित साइलो की ओर से एसएमएस आया है। इन्होंने कहा है, एमबी अवल अवकल तम तो ओम वे कबुआई दिवा कलोलू वेले मन से ए रंग दिया लमोई दे विरोनगाई छमना चुआन इल्जित साइलो तो इतके लोग इतलाक छंजम तान ला जोंग जोंग इतान करों तीनी से चुआन के वाल हियान इन्फर्नो मुआन पुई सोई तोर कशलाओ

क्यों दोस्तों, आप सबको भी पसंद आए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। देखना चाहूंगी कि आप क्या कहते हैं। दोस्तों चलना चाहूंगी अगले गीत की ओर। अगला गीत जो रहेगा वो आप सबके लिए मैं डेडिकेट करती हूँ, और यह है हम सफर मेरे गीत आप सबके लिए।

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी। वी कुंग तिया यहाँ लिखता है, इंगमो मानपुई निचिनाई सुखा कलौशम पन लवार उनतिया केवा लखिया निन मिंगमो तू ना तक ख्यान करो इंतिन ये सुखा सुई तुर कश लो मिंगमो ते चल कपेन फोक चाकती लो चो रनती मो खा खा मिंगमो ते ह्या न लो शे लो अनि थेया छंचू इनकम ते खा तुम सिया इनकम लाइ पोल अनि मै थेया आ इनकम बान फेले हे हिलो शि रो करंती नानी चो ए पेन फक चाक तो खान ओमनी थी खबो चलना चाहूंगी अगले गीत की और अगला गीत कम सुंदर नहीं, बहुत बहुत सुंदर है दोस्तों। और ये गीत जो है आप सबको भी बहुत पसंद आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। देखना चाहूंगी कि आप किस तरह से इस गीत को पसंद करते हैं या नहीं, ये आप मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। हाँ, ये रहा सनमपुरी द्वारा गाया गया गीत पाही लिया।

दोस्तों, अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ गया है और हमारा गीत बहुत सुंदर रहेगा आप सबके लिए। मैं इस गीत को छोड़ जाती हूँ।

लौटूंगी आप सबके लिए फिर से, तब तक के 9:30 बजे, तब तक के लिए मेरा फिर से इंतज़ार कीजिएगा। आपकी आरजीए अठवाल मोया मिक मिक तेया है ना आ रहे हैं, और उनका भी साथ दीजिएगा, मेरा भी साथ दीजिएगा, आपकी आरजे सीवी जो है उनका भी साथ आपने दिया, अच्छा लगा हम सबको। और यहाँ पे मिंग मोय तेया लिखता है माँ मोन पुई का मनता ए का हतियामो कछुआक दोन तो से का तीन तोपता अतोपता आ इरोन श्रिम्फने मो मिंग मोई ते का शच्या लोग मो जुवान जान कपु के वाला निखुआ लो जा जो क्लासिक लाई खान वो थी अंति मई मई खोपा अचला आ इन पेन लोम ले तू चल गे कपेन अति जो अमाले अमा आ इन पेन ती अशलो रेंग रेंग अतक सा जोंग जोंग अहि छुआक वेकनी अंग अनुफे आ आ इन पेन ले आ तुंगे एक चल पेन अतिले हुइस कुंगते हेन रन तिंगे हेनी अ चल पेन आयंग लो तले मे मेंग मोय ते ख चल पेन चाक ते देव तु खा अन ओम गे मो एंग पो नि से चोन हेता हेनिन ल दिन पुया हा ठीक है तै मोल मोल तो इन ला ओम ती कशिया आ मा से छर मन दोन तो लोवा इसी कारण मैं चलती हूँ गीत की ओर। दिल आ गया है तुम पे ये गीत जो है नया गीत है आप सबके लिए छोड़ जाती हूँ। 9:30 तक मेरा फिर से इंतजार कीजिएगा आपकी आरजे मोहन पुई 100.7 FM जो में।

आपके अर्जुन 100.7 FM जोयो में आप सबके साथ एक बार फिर आया समय फिर से हिंदी गीतों का आनंद लेने का। दोस्तों 9:30 बज गया है और ये मेरा अंतिम शो रहेगा हिंदी का, और इसी तरह से मैं चलना चाहूंगी गीत की ओर। गीत ये रहा आप सबके लिए सबसे पहला।

अगले गीत की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला गीत बहुत बहुत सुंदर है, ये रहा आप सबके लिए है अपना दिल तो आवारा। इस गीत के पश्चात हम सुनेंगे सनम पुरी द्वारा ही गाया गया एक और गीत, ये जो है समझावा गीत है, आप सबके लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ, ये रहा गीत, लीजिएगा आनंद।

मैं चलना चाहूंगी यहाँ कई SMS आए हैं। SMS में सबसे पहला यहाँ पे मैं देखना चाहूंगी किनका है। हाँ ये

करके हमें बड़ी खुशी हुई है। और इसी तरह जितने भी गीत हम सुनने जा रहे हैं आपके आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मैं डेडिकेट कर रही हूँ दुर्गेश। इसी तरह से हमारा हमेशा साथ दीजिएगा, राइट। और यहाँ पे अगला SMS जो है के वाला की ओर से, फर्नो मोन पुई वी को अंगती टप दोन ओके वी कुंग तेसी टा साक दे अनम ले ता जोक नि तुन सेगमेंट ता चा ना वी कुंग तिया लिखता है आरजे उमर पुई है कलमेंग ओ कपुके वा ल चो अटॉप नान कव पीआई लक दोन एम ने पीआई तो पो अ मुमंग तो नांग रोन ति बोक ता नि मो ओले ति खानिन इंग तिन गे नि इन रोन इन छान जेल दोन ले मा मोन पुई मेंग मोय ते की ओर से मा मोन पुई उनाउ पा के वाला खा चल पेन tivel ai chuanin chal tol a thut lai takin enge ni hei hi o thei to pin ka thut anga chumi hnuwa alit lingin khai ka nga nga ekim hi isim to angem kati ang atap burmayang ron din ni meng moi te ve thungino ole इन दुई खे वुर वुर ते कशिया आ सी जित की ओर से आज मन पुई ट्लोंग तकिन तुई तकिन दम तकिन ले रंतिया सी जित तमिन लो लो मेन पुई टांग टांग आ थैंक यू चुआन हे अठवाल मोय ल ओम दोन निया ओ चुआन सी जित ते बेंग मोय ते ते विकुंग ते के वाल ते दुर्गेश आल्सो। और इसी तरह से आप सबके लिए अगला गीत, हाँ यहाँ पे हेलेनी हेलेन की ओर से अजय मोनपुरी का बॉयलू तो का मैसेज पो कलो थनमन लोवे सनम पुरी चुजाई थ्याम नितिरो उदित नारायण ने ध्यान रंती ने निंगत में अनजाई थ्याम लोर लोर थे तप ताने चन हेलेनी तुई तकई लंग आइ थाक अतान कन गई थाक ले तुर ही इतान ओ चलना चाहूंगी गीत की ओर। ये रहा दोस्तों बहुत ही सुंदर गीत आप सबके लिए मेरी ओर से।

दोस्तों, मैं SMS की ओर जाना चाहूंगी, और ये SMS जो रहेगा किन की ओर से है मैं देखना चाहूँ। के वाला की ओर से SMS आया है, और इन्होंने क्या लिखा है। फंड मानपुई मिंग मोइते आ दाक और खोपिन अनारा कपिन सक चाक ए अमित तुई तपुर तोरिन न रन तिलेंगे इतानी मो हे मेंग मोय ते रन छांग ले चेने ओई उनाउ पा हियानिन इंगतिन गी रन छान वे दोन ले चान। यहां पे छेड़छाड़ बहुत चलता है दोस्तों, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहां पे किन की ओर से, दुर्गेश की ओर से यहां एक फरमाइश है, दो पल की, ठीक है ना। दो पल की ये गीत जो है मैं ढूंढ रही हूँ, साथ ही साथ जब मैं बातें कर रही हूँ देखती हूँ मिलता है या नहीं, ठीक है ना। दो पल की, हाँ, ये जो है आप सबके लिए, और खास तौर से इसे फरमाइश देने वाले दुर्गेश के लिए जाता है। और मैं कहना चाहूंगी, अंतिम गीत की ओर जाने का समय आ जाएगा थोड़ी देर बाद। ये रहा गीत।

दोस्तों, मैं जाना चाहूंगी एसएमएस की ओर। यहाँ एसएमएस आए हैं वी कुंगते की ओर से। उमानपुए कतलिन तलो कमुहिल मयंग और अंत्या कश्याम लुतुकचे वी कुंगते और इमुता हुंतो लुतुक दो नमो चुवांग चुन हादम तकिन तुई तकिन लो मोला तकतुक जिंग आदम तकले हिम तकिन थो तोरिन दो सकना कहलान मोल मोल से ओ चौन। यहाँ पे दुर्गेश की ओर से इन्होंने बहुत सारे गीत के लिए यहाँ पे फरमाइश तो दिए हैं, लेकिन मैंने एक गीत आपका प्ले किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे सिस्टर, शुभ रात्रि कह करके इन्होंने हमें एसएमएस भेजा है। आपको भी शुभ रात्रि, और इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और आपने धन्यवाद कहा, आप खुश हैं तो मैं भी खुश, राइट। एंड हेलेन ने की ओर से इन्होंने कहा, और जे मोन पिजानिन चू अठवाल मोयन खान परदेसी परदेसी जाना नहीं थी मई चौक दो तुआंग दे विनिन होला इलो ड्यूटी ले व दोनिया ओ मुत्तु सुख सुख ले हेलेनी पुई लो हिया नरोंती नि हेलेनी नंग पुई गाय ओम तो पहे जान इना अठवाल मोय ने न कन हन ड्यूटी जान इन रोन लंगा केनी पोकन लो हिम तो पने चान नंग पो परदेसी बरदेसी जाना नहीं ते अमो हन लाम खुम वक चपो खचा कोम तानी चो ओयोम छेन मासे कनिन तोंगले थ्वायंग हेलेनी तो बेरलाही इतान करुण लान बोगा। और इसी तरह दोस्तों, आप सबके लिए भी ये अंतिम गीत जो है मैं छोड़ जाती हूँ। अंतिम गीत बहुत सुंदर है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में, ठीक है, ये गीत जो है आप सब के लिए छोड़ जाती हूँ। आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। और इसी तरह आप सबको बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ शुभ शुभ रात्रि। आपकी आरजे मानपुरी 100.7 FM जो ओ में आप सबके साथ।